0: की तो हद कुछ लुकाया है, तौलिया बदन वाली है।
1: सारिया कुड़िया उसकी दस्तार नु छून लग दिया हन, हसदिया हन ते खोलन दी कोशिश कर दिया हन। दस्तार दा एक लड़ खुल जांदा है, जिंद कौर नु गुस्सा आ जांदा है।
2: ओए रुक जाओ, पीछे हटो,
0: तेरे उत्ते जी चीज क्यों है अजीब कुड़ी।
1: जिवे जिवे कुड़िया उस दे नाल धक्केशाही कर दिया हन, जिंद कौर बेबस महसूस कर दी है। ओ उन्ना उत्ते टूट के पैना चाहुंदी है, उसका एक मन रोना भी चाहुंदा है। वो सोचती है,
2: मैनू जमा पसंद नहीं, मैं चाहती हाँ कि ये गायब हो जान।
1: पर फिर ओनू चेते आंदा है जो उसकी माता जी ने उसनू दस्या सी कि गुरु जी हमेशा उसकी राखी करते हैं, ते अरदास करती है,
2: हे वाहेगुरु जी कृपा करके मैनू एहो जी जगह या इंसान कोल भेज दो जिथों मैनू होर ताकत मिले।
1: अते बेअंत कृपा सदका उसकी शक्ति जाग पैंदी है। जिंद कौर अपने आप नू एक रोशनी दी धुन भरी दुनिया विच पाउंदी है।
2: मैनू इत्थे बहुत शांत महसूस हो रहा है।
1: हैरान होके वो देखती है कि ए नूरानी सिख बीबी उसके सामने है।
2: तुसी कौन हो ते मैं किथे हाँ?
3: असी शहीदां दे मंडल विच हाँ।
2: ए शहीद कौन होंदे हन?
3: शहीद ओ हुंदे हन जो अपनी अभिलाषा नाल सच दी खातर अपनी जान कुर्बान कर दिंदे हन। मेरा नाम शरण कौर है, तुहाडी तरह मैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी धी हाँ। उन्हां ने मैनू कहा कि मेरी कहानी तुहाडी मदद करेगी। की परेशानी है छोटी भैन, की होया?
2: मैं पहले दिन नवे स्कूल गई सी जिथे मेरी तरह दा कोई नहीं दिखदा। कुछ कुड़िया मेरे को आईया ते मेरी दस्तार खोलन की कोशिश की ते मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिता। मैं बहुत दुखी सी ते मैनू पता नहीं सी लगता कि मैं की करा। इसलिए मैं वाहगुरु जी नू कहा कि तुसी मैनू मार्ग दिखाओ। आप जी दी की कहानी है?
1: बीबी शरण कौर गंभीरता नाल जिंद कौर दी अखां विच देखते हन ते गल शुरू करते हन।
3: मैं जंग दे समय जिउंदी सी।
1: जिंद कौर हुण अपने सामने अपनी नवी सहेली दी जिंदगी इस तरह देख सकती है जिवें कि वो टीवी ते आ रही होवे।
3: जदों मैं 16 सालां दी सी उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छड्डिया सी ते दुश्मनां दी फौज ने निश्चा कर लिया सी कि वो सानूं सिखां नूं इस धरती तों मिटा देणगे अते गुरु साहिब जी नूं भी मार देणगे।
4: खत्म कर दियो इन्हां नूं।
3: गुरु जी उन्हां दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी अते कुछ दर्जन खालसे नेड़े दे एक शहर विच जा पहुंचे। वो सब एक किले विच सन जिसका नाम सी चमकौर अते शाही फौजां जिन्हां विच लखां दी गिणती विच सिपाही सन उन्हां ने किले नूं चारे पासों घेरा पाया होया सी। ਇਹ ਸਭ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
3: ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਲਗਾਓ ਜੀ।
7: ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਖਾਤਰ ਲੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।
3: ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਲਈ ਵੀ ਡਰਿਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਬੇਖੌਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਗਲਬਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਭੈ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀਏ।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: शाबाश, पर जे तुहानू कदे डर लगे भी उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ये वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।